0: आप भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंडर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: क्या बात है, वेरी गुड। सो जरूर सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ते गेड़ा तुसी मार के आओ, दो बोल सुन लिए ते फिर वापस आके अगली गल भी थोड़े नाल कर दिया। नहीं यार सा बनदा यार, दिलजीत थोड़े आ रहे अपने शहर, दिलजीत दा गाना सुनते हैं जेड़ा अजकल बहुत ही मशहूर है।

0: अखीर मिट्टी होना है। हो चार दिना दी जिंदगी तेरी किस गल तो तू इतरावे, की भरोसा सावादा दमे आवे जाना आवे। हो कम नयोनी सोच तेरी तकरीर मिट्टी होना है, मिट्टी दे बावे अखीर मिट्टी होना है। हाय मिट्टी दे बावे अखीर मिट्टी होना है, अखीर मिट्टी होना है।
1: बहुत वधिया जी, बहुत वधिया, बहुत वधिया आवाज है। ते परमात्मा करे तुहाडी आवाज इस तरह ही सुरीली बनी रहे, ते तुसी साडे नाल जुड़दे रहा करो, असी तुहाडी कला दा ना फायदा लेंदे रहा करेंगे साडी रेडियो प्रोग्राम दे विच।
0: थैंक यू जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। सो दोस्तों, तुसी भी कोई गलबात साडे नाल करनी होए तां कर सकदे हो। 647-367-5353 साडे स्टूडियो दा नंबर है, 647-367-5353 साडे रेडियो प्रोग्राम दे

0: Mohan. Contact us at richmohan.com.
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-15

सूखे हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्टि संच जीवाए, काटे कस्तूरे कसे सेवक को दिली अपनी से मिल गई सुने मन आशा कई दया का सुगुरता सा रुकना से सुखवाए समाए तीन दफाए जाए और फरमाए कुछ पुण्य पूरे गुर मिले नानक के जन सो फल फले गौरी महला पंजवा ताप गए पाई प्रभ साथ शीतल भय कीनी प्रभ दात प्रभ कृपा ते भय सोहेले जन्म जन्म के बिछड़े मेले रहा सिमरत सिमरत प्रभ का नाम सगल रोग का विनसिया था सहज सुबाए बोले हर बाणी आज पहर प्रभ सिमरो प्राणी।

0: जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन बसै मन आए। जब मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखानी रहा। एक बिन नाही दूजा कोई, जाकी दृष्ट सदा सुख होए। साजन मीत सखा करे, हर हर मन महलेख। रब रहे सर्वत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। सौनी महला पंचमा, कोट बिगन हिरे खिन माहे। हर हर कथा साध सुना है, पीवत राम रस अमृत गुण जास। जब हर चरण मिट्टी खुदता, सर्व कल्याण सुख साजन दान।
1: जिगोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-455-3333 पर कॉल कीजिए। 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल।

गए पूरण पैसे रहा शीतला ते रखिया बिहारी पात हम कब कृपा धारी नानक नाम जपै तो

मेरे महे निर्गुण सगुण तेरे रहा। पंच बेखा दी एक गरीबा रात हरा तनहारे, खेत कर है अर बहुत संता रहे, आया शरण तुहारे। कर कर आयो अनेक को पाती, चूर है सतगुण

पार्श्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सत्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंघे मे पातु मार्तांडो गुल्फौ पातु तिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकचम्पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्यपदवीं लभेत्।

जी हाँ, आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय सियाम, या अली मदद। और आपका जो वीकेंड है इस बार बहुत ही सुहावना है, मौसम है बहुत ही सुहावना है, उसी तरह का हम आपके लिए गीत सुनाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, किचन की गैजेट्स आपको बढ़िया चाहिए, टीवी बढ़िया चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, या बारबेक्यू चाहिए जो कि डिजिटल आजकल बहुत बढ़िया बन गए हैं, जी हाँ, तो अब अगर आपने बढ़िया फर्नीचर, बढ़िया बारबेक्यूज लेने हैं, बढ़िया टीवी लेना है, आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, अपनी फादर्स डे की शॉपिंग अभी कर लीजिए, बढ़िया बढ़िया बार्गेन्स आपको मिलेंगे। और जानकारी के लिए आप उनको ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 9057990045। आपको सोने के गहने लेने हैं, डिजिटल गहने लेने हैं, शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे और किसी भी मौके के लिए गहने चाहिए, तो आप एल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए, एयरपोर्ट रोड पे मॉडल में मौजूद हैं एल मदीना ज्वेलर्स। और फादर्स डे के लिए भी अभी से आप उनसे शॉपिंग कर लीजिए, ऑर्डर कर लीजिए। ऑर्डर करने के लिए 905-673-0100 पर कॉल कीजिए, 9056-73-0100 पर कॉल कर लीजिए। तो आइए आपको बढ़िया सा गीत सुनाते हैं मौसम के बारे में ही। तो पकीज़ा फिल्म जो एक मीना कुमारी जी की लास्ट फिल्म थी, तो उसी का आपके लिए गीत सुनाते हैं, तो उम्मीद रखती हूँ आपको पसंद आएगा। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने प्रॉपर्टी लेनी है किचनर वाटरलू गोल्फ में, तो आपने स्टीव थिंड को कॉल कीजिए 519-546-1260 पर कॉल कर सकते हो। और अब अगर आपने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा है तो गुरप्रीत रोड और अपना टैक्स भरवा लें, 416-382-8135। अब वीकेंड में नियाग्रा फॉल आए हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, नियाग्रा फॉल में मेन स्ट्रीट पे जब आप चिपवा की तरफ जाते हो, वहाँ टिम होटल है, फिर ब्रिज के ऊपर से जा करके बहुत ही बढ़िया पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बारबेक्यू एंड पार्टी, वहाँ पे 70 लोगों की कैपेसिटी की सीटिंग है। तो अगर आप नियाग्रा फॉल में बर्थडे मनाना चाहते हो तो आप बारबेक्यू एंड पार्टी वालों को कॉल कीजिएगा और अपनी पार्टी बुक करिएगा। और खाना उनका एकदम बहुत ही स्वादिष्ट है, और खास करके चिक्कड़ छोले बहुत बढ़िया बनाते हैं वो। तो आप आइए सुनिए ये गीत।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, या फिर आपने कोई बढ़िया सा, आपको टीवी चाहिए, बढ़िया बैक यार्ड, आपको बारबेक्यू चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे ब्रैम्पटन में मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो आपने फादर्स डे की शॉपिंग करनी है, अभी शॉपिंग करिए, ऑर्डर कीजिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045-799-0045। आप घर खरीद लेते हो तो फिर आपको मूव में होना पड़ता है। समर में बहुत लोग मूव करते हैं क्योंकि उनको नए नए घर खरीद रहे हैं, तो आपको मूविंग करनी है तो एच के मूवर्स का नाम याद रखिए, कनाडा भर में आपकी मूव होने में मदद करते हैं। तो अभी से अपना ट्रक बुक कर लीजिए, बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़ी हिफाजत से पहुंचाते हैं। 416-524-7704, 416-524-6704 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को कॉल कर लीजिए। आइए, अब आपको एक दुपट्टे के बारे में बहुत सारे गाने लिखे गए हैं, तो आपको ये गाना सुनाती हूँ ओल्ड बरसात फिल्म से।

जी हाँ, तो ये था आपके लिए गीता जी का गाया हुआ गीत। अब आपको एक और गीत सुनाएंगे, पर पहले आपको बता दें कि अगर आपने सोने के गहने खरीदने हैं, सोने की बार खरीदनी है, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स में जाइए, और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-673-0100 पर कॉल कीजिए, 9056-73-0100। तो अब आपको मूव होना है, तो मूव होने के लिए आप एच के मूवर्स का नाम याद रखिए, उनको कॉल कीजिए 416-524-7704, अपना ट्रक बुक कीजिए, और कनाडा भर में आपको मूव करने में मदद करते हैं और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो एच के मूवर्स 416-524-6704। अब आपने अगर टैक्स अभी तक नहीं भरा है, तो प्लीज रोडे को कॉल कीजिए, पर्सनल हो या बिजनेस, 416-302-8834-416-302-8135 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। तो आइए अब आपको ये प्यारा सा गीत सुनाते हैं। लेट्स गो टू दिस।

जी हाँ, तो अब आपके लिए जो हफ्ता है वो बहुत ही जल्दी बीत जाता है, क्योंकि आप व्यस्त रहते हो, काम इतना होता है। अब मौसम जब थोड़ा बेईमान होता है तो फिर आपको बरसात मिलती है और धूप बहुत ज्यादा कड़कते वाली होती है। तो इस हफ्ते तो लोगों ने जरूर पंखे एयर कंडीशनर निकाल लिए होंगे, गर्मी इतनी लगी होगी। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी उस हालत को, क्योंकि अब मौसम है तो उसका तो हमें कभी ज्यादा स्नो होती है तो कभी ज्यादा गर्मी होती है। जिंदगी का यही एक अनोखा मजा है। तो कव्वाली जो होती थी, एक जमाना था, वो एक जरूर हिस्सा था किसी भी मूवी में। तो पुराने वाले समय में ये अलग तरीके की जो होती थी, मुजरे वाले गाने होते थे। तो आजकल थोड़े ट्रेंड जो है वो बदला है। वो आजकल के जो यंग जनरेशन जिस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं, तो फिर अपीलिंग म्यूजिक उनके लिए हो, आजकल उन्हीं के लिए ही उसी तरीके से बनाई जाती हैं। कई गाने हमारे जैसे ओल्ड लोगों के लिए भी होते हैं। वैसे तो यहाँ पे रहते हुए फिर ओल्डर लोग भी नए नए रंगों की तरफ, उनका भी कोई ज़्यादा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नए नए गाने आते हैं तो वो उन्हीं को पसंद करने लग जाते हैं। तो फ्लेक्सिबल है, विच इज़ ग्रेट। तो आइए सुनिए ये गीत। और पहले बता दें, अगर आपको मूव होना है तो इसके मूवर 400 500 524 4164-5246-7704। आपने खाना खाना है, ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, तो इन न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है मिसिसागा में। तो आप अपना ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं 905-814-1730, 9058141730। और 30 मई को, यानी कि कल, स्काई डोम वालों का बहुत बड़े धूमधाम से उनका मेला होने जा रहा है। तो आप जरूर जाइएगा। स्काई डोम ऑटो वालों को आप कॉल कर सकते हैं 905-874-9878, 9058141-9878। तो आइए सुनिए ये गीत।

का समय आपकी तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। रात को भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे बढ़िया सा प्रोग्राम लेकर के 10 से 11 बजे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणी सुहादा कला।

सूखे हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कस्तूरे कसे सेवक को दिली अपनी मिल गई तुम्हें मन आशा करी दया सचु जुड़ता सा दुखना से छुड़वाए समाए पीड़ा पाई जाए दुर्मार में कुछ पुण्य पूरे दुर्मिले।

शीतल भय कीनी प्रभ दात, प्रभ कृपा ते भय सोहेले, जन्म जन्म के बिछुड़े मेले रहा। सिमरत सिमरत प्रभ का नाम, सगल रोग का विनसिया था। सहज सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभ सिमरो प्राणी।

0: जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन बसै मन आए। जब मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखानी रहा। एक बिन नाही दूजा कोई, जाकी दृष्ट सदा सुख होए। साजन मीत सखा करे, हर हर मन महलेख। रव रहे सर्वत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौरी मोहल्ला पंचमा, कोट बिगन हिरे खिन माहे। हर हर कथा साध सुना है, पीवत राम रस अमृत गुण जास। जब हर चरण मिट्टी खुदता था, सर्व कल्याण सुख साजन दान।
1: जिगोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-455-1980 पर कॉल कीजिए। 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
0: आखद मन रतन सब छाज, करना हार हृदय महताज। तज सब परम भजो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल एहु धर्म। गौरी मोहल्ला पंजवां, सांत पई गुरु गोविंद पाई। ताप पाप बिन से मेरे पाई रहा।

नाम श्री वाहे गुरु साहेबा जी तनासरी महला पंजवा त्रिपत पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम त्याया त्रिपत पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम त्याया

0: सच कहे जे होंदा।
1: चुल्ले ते पकदी रोटी सच है,
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है,
1: गुरु दी बाणी सच है, सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे हुंदे ने।

0: 647-969-1298 Jesse's Plumbing.
1: रॉकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca.

0: आदिवाद सुनी दर्शन का आदिवाद का बहुत आर्य है सरदार जी ने।
1: थैंक यू अर्जुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लाइंसेस का मैसेज दे रहे हैं जी, खासतौर से बिग स्क्रीन टीवी, जेड़े भी स्पोर्ट्स के शौकीन है या जेड़े भी बिग मूवीज घर च बैठ के बिग स्क्रीन से देखना चाहते, उन्होंने वास्ते बड़ा वाला एडवांटेज है क्योंकि सैमसंग स्पॉन्सर कर रहा जी फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट के सैमसंग ने बिग स्क्रीन टीविया के उपर वाला डिस्काउंट दिता। 85 इंच QLED क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के 85 इंच QLED $2000।

0: शंकर नो आप बुलाया, शंकर जी आप पधारे, बोले तुम कहो प्यारे।
1: अच्छा?
0: शंकर तो जो भर पाया, क्या तेरी समझ न आया।
1: ना बाबा मेरी समझ नहीं आया।
0: तू पढ़ी लिखी आपे बुझ ले, तेरे कन चुप।

0: विश्वास वाला नाम नरदेव सिद्धू, लाइसेंस नंबर 10530, nardevsiddhu.com।
1: अकाल डक क्लीनिंग वाले पिछले 40 वर्षों तो साड़ी कम्युनिटी की सेवा कर रहे ने। साड़ी कम्युनिटी की सब तो पहली कंपनी है डक क्लीनिंग दी। आजकल उन्होंने स्पेशल लगाए ने, खास करके ब्रैम्पटन, मिसिसागा, एथोबिको लोकल एरिया दे विच। किसी साइज का भी घर हो, अप टू 3000 स्क्वायर फीट दे डक क्लीन कराओ। जी हाँ, ओनली $140। वैसे तो रेगुलर प्राइस $250 विच करदे ने, लेकिन हुण उन्होंने स्पेशल लगाया डक क्लीनिंग, सिर्फ ते सिर्फ $140 दे हो ते अपने डक्ट क्लीन कराओ। बड़ी ही बढ़िया ढंग नाल डक्ट क्लीन करनगे, सैनिटाइजर करके जानगे। नाल दी नाल ए हर तरह दी रिपेयर करदे ने, इंस्टॉल करदे ने एयर कंडीशन ते फर्नेस। www.akalduct.com। अज ही इन्हां नूं बुकिंग वास्ते कॉल कर लो, 416-710-0662, 416-710-0662। साडी कम्युनिटी दी सब तो पहली कंपनी अकाल डक्ट क्लीनिंग पिछले 40 वर्षों तो ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਓਪਨ 7 ਡੇਜ਼ ਅ ਵੀਕ।
2: ਹੈਲੋ AM 530 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ।
1: ਟੁਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-564-6444।
2: 905-564-6444।
1: ਹੁਣ

नमस्कारम लई देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी थोड़े अंग संग है 24 घंटे सतो दिन हुण तक देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके है ते करवा रहा है इम्पॉसिबल इज नथिंग तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश पर देश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551

0: जी दो बैचेस रह गए हैं एंड दो ही महीने रह गए हैं. अब इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि आप एंड के दो महीने में आएंगे, मतलब लास्ट दिन को ही आएंगे. क्यों? क्योंकि जब आप गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम करते हैं उसमें फाइल बनानी होती है, हमें 4-5 दिन उसमें लग जाते हैं और बैच की भी डेडलाइन डेट होती है. जैसे बैच 10 जून को स्टार्ट है तो 2 या 3 जून उसका लास्ट रजिस्ट्रेशन टाइम है. तो आप हुने एनरोल करो जी गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम. गवर्नमेंट फीस पे करती है और आपको फंडिंग देती है 30 से 100,000 डॉलर की, जिसका आज की डेट में जोर लगा के आधा पैसा क्या है, नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स. कोई कैच नहीं है, पैसा सीधा आपके खाते में आते, मेरे खाते में नहीं आता. कोई एज लिमिट नहीं है जी सोखे के कोर्सेज ने, फुली ऑनलाइन कोर्सेज ने. 2 से 3 घंटे आपने लाने हैं बस एवरी डे मंडे टू फ्राइडे. असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है. अगर आप रिटायर्ड भी हैं 30 ईयर्स है, 50 ईयर्स 70 ईयर्स, नो डिस्क्रिमिनेशन. कोई गवर्नमेंट के प्रोग्राम एज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते. कॉल करें आप हमें.
1: इनो एक बार सानू कोई एग्जांपल देखे समझाओ कि केड़ी केड़ी फैमिली ले यह गोड़ा के केड़े बिजनेस बंदे ले जां फिर रिटायर्ड बंदे ले सिंगल मदर ले केड़े फैमिली साइज की है, थोड़ा एग्जांपल देना समझाओ ते केड़ी फैमिली साइज नू कितनी क ग्रांट मिल सकदी.
0: हाँ जी, पहले इसलिए फिल्टर आउट करने के लिए इसको और इजी बनाते हैं कि इसके लिए बढ़िया नहीं है. अगर आपकी इनकम ज्यादा है 2024 के नोटिस ऑफ इन्वेस्टमेंट पे $70,000 से तो कॉल ना करें, क्योंकि जो हम ऑन एयर कह रहे हैं वही ऑफ एयर आपने सुनना है हमसे. और उसमें मतलब अगर आपकी इनकम कम है, कम $70,000 से, एंड देन आपको इसका अच्छा बेनिफिट है. पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन आप हैं, आपको अच्छा बेनिफिट है. एज लिमिट कुछ है नहीं, क्रेडिट चेक इसके अंदर होता नहीं है. अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ऊबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउसवाइफ, अनएम्प्लॉयड, आपको अच्छा बेनिफिट है. यहाँ पे आपको गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है जी, बैंक नहीं दे रहा, तो उसकी जितनी कम इनकम है उतना ज्यादा बेनिफिट है. और इसमें क्या कहते हैं लाइक अगर फैमिली ऑफ टू है, हस्बैंड वाइफ में से अगर वाइफ करते हैं तो उनको अप टू 45,000 की फंडिंग आती है, जिसमें से $25,000 इज द ग्रांट मनी. उसमें से आप फीस निकाल देंगे 11,000-14,000 आप नेट ग्रांट घर लेके जा रहे हैं. साथ में ऑप्शनल $17,000 का लोन आता है. फैमिली ऑफ फोर को अप टू 80,000 की फंडिंग आती है. अगर आपके दो बच्चे हैं और आप खुद क्लास लगाते हैं जी, फुली ऑनलाइन सोखे जे कोर्सेज करते हैं, इसमें असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है. अब 80,000 में से 40,000 तो ग्रांट ही है जी, बाकी 40,000 0% पे ऑप्शनल लोन है. फैमिली फाइव को अप टू 100,000 की फंडिंग आती है, जिसका $50,000 ग्रांट है, $50,000 0% पे लोन है. वो लोन 1.5 साल बाद जब अपना पे करना स्टार्ट करेंगे तब उसका ब्याज दर सिर्फ 2.5% है. मतलब 50,000 पे बिना क्रेडिट चेक के, बिना सिक्योरिटी के, बिना कोलेटरल के 50,000 पे सिर्फ $40 ब्याज है 10 साल के लिए.
1: वेरी गुड. तो ये एक बंदा सिटीन होना चाहिए, उसकी इनकम पी आर या सिटीन होना चाहिए, इनकम $70,000 तो घट होनी चाहिए है फैमिली इनकम, तो नाल दे नाल बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए. अच्छा जिहड़ी स्टडी आ ये तो दस दे कि औखे कोर्स भी आ सौखे भी आ, घर बैठ के भी कोर्स कर सकते हैं तो अपन जे ने इन परसन भी जा सकते हैं.
0: बिल्कुल सही कहा आपने. कुछ कोर्सेज ऐसे जैसे HVAC हो गया और प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया. अब मानेंगे हम मतलब महीने की सिर्फ 2 एंट्री है हमारी उसकी, HVAC की और प्लम्बिंग की. जब कॉल भी करते हैं ना HVAC का कोर्स करना है तो फिर जब देखते हैं इतना फर्क पड़ रहा है एस्टिमेट में, कॉलेज जाना पड़ेगा, वो भी कहते हैं दूसरे में करा दो आसान वालों में. तो मतलब आप आसान वाले कोर्सेज में मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ऐसे सोखे जी कोर्सेज में फुली ऑनलाइन है, असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है. फंडिंग डायरेक्ट क्लाइंट के अकाउंट में आती है जी. गवर्नमेंट जब $965 मिलियन देश के बाहर 650 ऑर्गेनाइजेशन पे लगा देती है जेंडर इक्वालिटी के लिए, तो गवर्नमेंट जब एजुकेशन में स्पेंड करती है $1 बिलियन जो कि मतलब 25 बिलियन कम है सिर्फ जो बाहर फेंका है उन्होंने जेंडर इक्वालिटी के लिए, तब हमें लगता है कुछ कैसे कैसे कैच है. देयर इज नो कैच इन, फंडिंग आपके अकाउंट में डायरेक्ट आती है.
1: ते तुहाडी फीस किन्नी है ते फीस कदों तुसी लैणे हो?
0: हां जी, फीस साडी है जी 199 या 499 डिपेंडिंग ऑन कोर्स. एक कोर्स ईजी है, एक बहुत ईजी है. तो इसमें और कोई परसेंटेज, कोई कमीशन नहीं है. पैसा आपने काम होने के बाद देना होता है जी. आप आज ज्वाइन करते हैं 30 से 90 डेज में आपके अकाउंट फंडिंग आती है. देन आज हमने एक और नई लड़की को हायर करा है. आपका उसका काम यही आपको लोगों को फोन लगाने का पैसे मांगने के लिए. क्यों? जब डिले करते हैं ना पैसे मांगने के लिए तो आधे लोग तो भूल ही जाते हैं हमें. सर पैसे भी थे आपके?
1: खाते 50,000 आ रहे हैं, 500 तो आपकी फीस देना तो कोई औखा नहीं होना चाहिए. सो नंबर एक बार दस दो जी, साझा कर दो एड्रेस से तुम वेट कर सकते हैं.
0: हाँ जी, ऑफिस एड्रेस है जी 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हरिद्वार डेयरी. असली में सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो लोग मिस करेंगे वो बहुत बड़ा उनको लॉस है इस चीज में. क्यों? क्योंकि अगर आप अपने 5 फ्रेंड्स को फोन करेंगे, 3 ने एडमिशन ले लिया,

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए हैं जी सारे जने आप वीकेंड तुसी इंजॉय कर रहे हो शनिवार की शाम की महफल दे विच एक बार फिर तो ट्यून इन कर चुके हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल मेरे वालों साढ़े सारे लिसनर्स नूं सारे परिवारों नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नूं खुशामदीद एंड स्वागतम

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी का एक बार फिर से मोहब्बत भरा सलाम। आज फिर से आपके दिलों पर दस्तक देकर आपको थोड़ा सा मद खुशी के आलम में ले जाने के लिए चलते हैं सुखनवरी की दुनिया में। शेर व शायरी से लबरेज और गजलों का ये मुख्तलिफ सिलसिला लेकर हाजिर हूं कहकशा। दोस्तों ने दोस्तों से जब भी की दुश्मनी, दुश्मनों की दुश्मनी का हर गिला जाता रहा। समीन दोस्त दो दस्त से वाबस्ता होते हैं, यानी दो हाथ जब मिलते हैं तो दोस्ती का रिश्ता मुकम्मल सा हो जाता है। मगर कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो दुश्मनों से भी बदतर होते हैं। कुछ ऐसा ही एहसास है इस खूबसूरत गजल में, जिसे पुरसोज पुरनूर आवाज दी है जगजीत सिंह ने।

किसकी सदा ने फिर हमें बेचैन कर दिया, किसकी सदा ने फिर हमें बेचैन कर दिया, नगमात किसके नींद से हमको जगा गए, अपनी नजर में और समाता नहीं कोई, अब दिल में बस गए वो नजर में समा गए। समीन नजर अक्सर खूबसूरती और खूबसूरत रिश्तों को ही ढूंढना चाहती है, मगर नजर जब आईने का सामना करती है तो फिर रिश्तों और रास्तों को भी ढूंढना चाहती है। ऐसी ही एक गजल आपकी नजर करना चाहता हूं, जिसे बहुत ही खूबसूरत आवाज के साथ गाया है गुलाम।